ये हिचलता फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें। दोस्तों साथियों, आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो पे। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज हमारे साथ में हमेशा की तरह साहिल इज प्रेजेंट, जो पैनल में साथ दे रहे हैं। और इस बार भी हमारे पास है गेस्ट है, उसको भी हम स्वागत करते हैं, संजय फ्रॉम

0: पैसिफिक कावा लॉन्च हमारे साथ स्टडियो में शामिल हो चुके हैं. हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे और गीत के बाद में फिर हम संजय से बात करते चलेंगे. काफ़ी खुशखबरी जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि पैसिफिक कावा लॉन्च जैसे आपको मालूम है क्राइस्टचर्च में काफ़ी दिन हो गए, इसको जो रेस्टोरेंट आप लोग गए भी होंगे, इट्स ए काइंड ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, उसके विषय में बात करेंगे. एट द सेम टाइम दे सम न्यूज फॉर यू बिकॉज दे आर एडिंग वन मोर रेस्टोरेंट जो एच पैटर्न में खोलने जा रहा है, उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. एट द सेम टाइम आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑल ब्लैक्स इज गोइंग टू टेक ऑन फ्रांस टुडे इन साइलेजिया. अगर हमें मौका लगा देन हम साहिल से भी उससे टिप्पणी लेंगे और साथ साथ में फीफा ऑफ कोर्स हु इज विच इज़ योर टीम और आपका टीम कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वी विल सी कि किस टीम पे साहिल ने बेट किया है और कैसा जा रहा है. और मे बी अभी तक शायद वो टीम घर पे वापस भी पहुंच गया होगा, हु नोज, विल आस्क हिम फॉर दैट. एट द सेम टाइम आज जो काफ़ी इवेंट्स भी हो रहे हैं क्राइस्टचर्च में, इफ़ यू आर इन क्राइस्टचर्च आपको सिर्फ याद दिला दें कि चिल्ड्रंस हनुमान जो 40 पाठ है ये भी हो रहा है एंड वहाँ भी आप जा सकते हो. सो दैट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ जो आज होने को था हनुमान चालीसा. एट द सेम टाइम जो और एक जो पूजा हो रहा है वहाँ भी जा सकते हो, जो माँ जो भागेश्वर धाम की जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ भी आप जा सकते हो. और साथ साथ में एक इन्फॉर्मेशन और हमारे पास है, विच इज द गिरमिट सेलिब्रेशन, गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट है. इट इज़ एट टेम्पलटन हॉल एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7ish. तो अगर आपको जाना है आप जा सकते हो. फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह सभी कुछ फ्री है. फ्री एंट्री है, फैमिली इवेंट है, यू कैन ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम एज वेल. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम एक सॉन्ग सुनते हैं जो साहिल ने सिलेक्ट किया, उसके बाद में और हम बात करते चलेंगे.
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह,
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप, तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिलफरिया.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथी आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेट प्रोग्राम में। वंस अगेन मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और मेरे साथ में स्पेंडिंग में साथ दे रहे हैं साहिल, और जैसे हमने बोला था हमारे जो साथ में संजय आज का गेस्ट है उससे भी हम बात करते चलेंगे। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें जो प्रोग्राम आज हो रहा है, अगर आप जाना चाहते हो देन इट्स गिरमिट रिमेम्बरेंस डे टू नाइट रहेगा टेम्पल्टन हॉल में, विच इज 64 खेक रोड। आप जा सकते हो और उसमें जो फ्री एंट्री है, फैमिली फ्री इवेंट है, परफॉर्मेंसेज एंड काफ़ी बातचीत होगी गिरमिट के विषय में, देन फील वेलकम। आप जा भी सकते हो, एक मॉडलिंग शो या पैरेड की तरह भी होगा, एंड कुछ कुछ एग्जीबिशन भी रहेंगे, जो चीज़ इस्तेमाल किया गया था उस ज़माने में वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स आई थिंक क्वाइट डिफरेंटली काफ़ी ऑर्गेनाइज हुआ है, देन डू गो एंड हैव अ गुड टाइम। तो गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट एट टेम्पल्टन हॉल, और साथ साथ में एक जो पूजा हो रहा है जिसे आपको मालूम होगा जो लोग फॉलो करते हैं, दैट इज द बर्थडे ऑफ भागेश्वर गुरुजी, तो उसका जो ये पूजा हो रहा है टुनाइट, और 48 स्टेट मेन रोड अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरे ख्याल से जो पूजा है 5:30 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, देन यू कैन ऑलवेज गो देयर। जो आरती वगैरह होता है उसमें भी आप टेक पार्ट कर सकते हो। तो चलो हम वी वोंट स्पेंड टू मच टाइम, बट फिर भी साहिल इज ही अभी तो साहिल से हम पूछ ही लेते हैं। तो साहिल, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, फ्रांस और ऑल ब्लैक्स?
1: आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम।
0: क्लोज गेम,
1: व्हाट डू यू थिंक?
0: मैं वेल फ्रेंच जब भी आते हैं न्यूजीलैंड के साथ में खेलते हैं, दे आर ऑन फायर इस पे, तो डेफिनेटली इट वोंट बी इजी, लेकिन फिर भी आई थिंक ऑल ब्लैक्स शुड विन। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब गेम होता है हमारे क्राइस्टचर्च में, देन इट इज द लकी ग्राउंड,
1: इट कैन गो आइदर वे। इट कैन गो आइदर वे, दे थिंक इज लाइक अभी फ्रेंच ने सिक्स नेशन जीता है, राइट, अपना उनका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टूर्नामेंट होता है, राइट, सो दे आर इन वेल फॉर्म। और न्यूजीलैंड का दे परफॉर्म बेटर एट होम, बट नया टीम है, सो इट्स लाइक
0: नया कोच भी है ना,
1: नया कोच है, नया टीम है, एंड नया कॉम्बिनेशन है, सो विल सी, इट कैन गो आइदर वे, बट आई एम प्रिडिक्टिंग अ क्लोज गेम।
0: And what about FIFA? आपका जो टीम है अभी भी है मैदान में या
1: कुछ कुछ है, कुछ कुछ निकल गए, एक तो बहुत पहले निकल गए।
0: ओके,
1: आज का जो गेम हुआ लाइक मेरे तीन में से दो देखा, पहला गेम ऑस्ट्रेलिया का था एंड दैट वाज अ वेरी क्लोज गेम, पेनल्टी शूट आउट्स पे गया, एंड सेकंड वन वाज अर्जेंटीना एंड सेकंड लक के नाम लाइक आई
0: फाइंडिंग आई नो दोस कंट्रीज,
1: दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट,
0: डोंट इवन आस्क मी।
1: सो दैट वेंट टू एक्स्ट्रा टाइम एज़ वेल, एंड बीइंग फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप, प्लेइंग वर्ल्ड कप,
0: दैट वाज प्रीटी गुड,
1: they gave Argentina a very hard time.
0: Yeah, definitely.
1: So Argentina like
0: but I actually ye jo dying stages na I love it, because jitne bhi game ho rahe hai na they are very close, just one jo one goal wo bhi end mein milta hai.
1: Nahi, but the thing is abhi jaise काफ़ी नया प्लेयर्स है, लाइक पुराने प्लेयर्स जा रहे हैं, टीम्स आर डेवलपिंग ना, काफ़ी प्लेयर्स को एक्सपोजर मिल रहा है, सो डजंट मैटर विच कंट्री इट इज, द टीम इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, and I'm actually enjoying the game of the lower ranked teams jo like pehli baar world cup khel

0: hey, yeah, they are on the bottom of the table. They are giving a very hard time to the top teams, जो रैंक्ड हाई है.
1: जी हाँ, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी फोकस जो स्टार प्लेयर्स के ऊपर भी होता है.
0: जी
1: सो
0: हाँ,
1: आई थिंक मेरे जितना मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि स्टार प्लेयर्स दे आर डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग. सो ठीक है,
0: दे
1: दे आर
0: शुड
1: डूइंग.
0: बी, आई मीन दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, बट देन आल्सो थोड़ा हाइप भी ज़्यादा है ना, तो प्रेशर भी एकदम से होता है ना कि ओके उतना हाइप है तो परफॉर्म भी करना पड़ता है. एंड या सो आई थिंक ओवरऑल इट इज़ गोइंग वेल. एंड जो टॉप रैंक टीम है आउट हो रहे धीरे धीरे, जैसे जर्मनी,
1: जर्मनी है, ये
0: राइट,
1: देर वॉज अ शोका.
0: देट वॉज लाइक शोका. एंड देर
1: आई
0: लाइक
1: थिंक साउथ
0: फ्यू,
1: कोरियन,
0: वो तो नहीं था,
1: जापान.
0: बट जापान वॉज, देट वॉज वेरी क्लोज गेम इज वेल ना, जो जापान या ब्राज़ील से हारा एक गोल से. पर दे आर लाइक बिग टीम्स जो बाहर जा रहे हैं एंड स्मॉल टीम्स आर डूइंग वेरी वेल. एंड इसमें एक वो था ना, एक मैं शुरू पढ़ा था, तो जो यूरोपियन टीम है उनका कोचेज एंड जो फेडरेशन है, दे वर कंप्लेनिंग ना कि दे शुड गिव चांसेस, लाइक देयर 16 टीम्स फ्रॉम यूरोप प्लेइंग एंड देयर आई थिंक अबाउट 9 टीम्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
1: जी
0: ना. सो दे वर लाइक इनका सोका खराब है, इनका उतना है ही नहीं ना, तो दे शुड गेट दैट मेनी प्लेसेस. और यूरोपियन टीम का सोका, लाइक दे आर टॉप सोका टीम्स ना जो यूरोप में होता है, एंड दे शुड बी एक्चुअली गेटिंग मोर प्लेसेस इन द वर्ल्ड कप टू प्ले. बट
1: अफ्रीकन टीम्स या दे आर
0: दे
1: काइंड ऑफ
0: आर काइंड ऑफ लाइक एट द बॉटम ना, कि
1: एग्जिट.
0: अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो सब ना. एंड इस वर्ल्ड कप पे उल्टा हुआ,
1: उल्टा हुआ.
0: द अफ्रीकन टीम्स आर एक्चुअली परफेक्ट बेटर देन यूरोपियन टीम्स.
1: जी
0: सर
1: विच इज ग्रेट. तो चलो सर, मैं क्विकली एक जो सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद में विल गेट आवर गेस्ट जो संजय,
0: जी
1: उससे भी हम बात करते चलेंगे. बिकॉज ही इज क्वाइट अ बिजी शेफ, हम कहेंगे काफ़ी बिजी पर्सन है. और उसको फिर वापस जाकर जो काफ़ी ऑर्डर्स आया हुआ है उसको वो भी करना है.
0: जी हाँ.

0: If you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथियों को स्वागत करते हैं चलसा फिजी रेडियो के 706 प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और जो लोग हमारे साथ में भी फेसबुक में जुड़ रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं और शुक्रिया करना चाहते हैं साहिल को, हु इज होल्डिंग द कैमरा और हमारे साथ में आज पैनल भी कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी में थे कि जो गेस्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड ही इज संजय फ्रॉम पैसिफिक का वालों। तो संजय, आपकी पहली मरतबा है आने के लिए, शुक्रिया आने के लिए। आई नो आज तो एक्चुअली गेम भी है, फ्रांस वर्सेस ओल्ड ब्लैक्स, एंड इट्स क्वाइट बिजी। हमें पता आपका रेस्टोरेंट फुल ऑन बिजी होता है, और फिर भी आपने समय निकाल के आया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आपको भागना भी है, बट दिस सम न्यूज़ दैट संजय हैज एंड ही वांट्स टू शेयर विद अस। इसलिए हमने बोला कि काफ़ी अच्छा रहेगा इफ यू कम ऑन बोर्ड एंड टेल अस मोर अबाउट इट, ताकि हम वो जो समाचार आपके साथ हम शेयर कर सके। तो आप बताइए, जो आपका यहाँ का जो रेस्टोरेंट है, दैट्स स्पेसिफिक कवर लॉन्च, कौन से एड्रेस पे?
2: 17/113 कैथेड्रल जंक्शन।
1: जी हाँ, यहाँ से बहुत दूर नहीं है,
2: ज़्यादा दूर नहीं है जस्ट।
1: जी हाँ जी हाँ, और आई थिंक दैट्स मोर लाइक इंडियन डिशेस आप बनाते हैं?
2: It's kind of a mix. Fijian, Indian भी बनाते हैं हम, और mostly like focus on Indian dishes.
1: जी हाँ,
2: but अभी तक जो लोगों का response है Fiji Indian curries के लिए, जी बहुत अच्छा है। स्पेशली हमारा जो गोट करी है उसके लिए काफी अच्छा रिव्यूज और लोगों की बहुत अप्रिसिएशन आ रही है उस चीज के लिए।
1: जी हाँ, वैसे आप लगते नहीं क्या फिजी को?
2: मैं फिजी से नहीं, मैं इंडिया से हूँ।
1: लेकिन जो फिजी का जो जिस तरह हम खाना खाते हैं, आपको पता है?
2: जी, क्योंकि मेरे जो बॉस है वो सूर्या जी, वो फिजियन है, तो उनका ही कॉन्सेप्ट था जो रेस्टोरेंट के, जो कावा का कॉन्सेप्ट था।
1: जी,
2: तो अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कावा के लिए भी, प्लस फिजी फूड के लिए भी। तो थैंक्स टू हर।
1: तो क्या होता है, लोग आते हैं एंड देन दे हैव फूड एंड ड्रिंक कावा, या हाउ डज दैट वर्क?
2: सो सम टाइम जब किसी को कावा पीना है तो जस्ट कावा के लिए ही आते हैं, मोस्टली कावा के साथ फूड भी इंजॉय करते हैं। और हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स कीवीज से भी मिल रहा है, जो यहाँ के कीवीज हैं वो भी बहुत अच्छा कावा को रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि इट्स अ वेरी कामिंग ड्रिंक।
1: जी हाँ, और साथ साथ में ओब्वियसली आई हैव गॉन टू द रेस्टोरेंट, हमने जो पूल वगैरह देखा है, आई एक्चुअली आई ट्राइड बट आई एम क्वाइट बैड एट दैट, बट उसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, गेम्स वगैरह जो आपने रखे हुए हैं?
2: जी, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एज फॉर पीपल जब भी अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको स्पेयर टाइम में वो पूल खेल सकते हैं, तो उनको वो भी एक बहुत अच्छा एडिशन है हमारे रेस्टोरेंट के लिए। तो अभी तक सब सही चल रहा है।
1: जी हाँ, और वैसे तो पैसिफिक कावा लॉन्च जी, बट मेरे ख्याल से कावा के अलावा भी काफ़ी कुछ है ना वैसे ड्रिंक्स वगैरह में?
2: जी, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज ऑफ वाइन, लोकल, इंटरनेशनल।
1: दिस इज मोर लाइक अ वाइन रेस्टोरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी आप लोगों के पास है। व्हाट अबाउट कैटरिंग, बिकॉज आई नो दैट दैट्स अनदर बिग थिंग हैपनिंग हियर एज वेल, क्योंकि लोग जब वेडिंग्स हो या बर्थडेज वगैरह कुछ होते हैं, डू दोस थिंग्स?
2: यस, वी डू डू द कैटरिंग्स एंड ऑल। अभी हमारे पास नेक्स्ट मंथ, नो सॉरी, दिस मंथ के लिए हमारे लिए एक फिजियन कैटरिंग आ रही है।
1: जी,
2: तो हम सब फिजियन फूड बना रहे हैं उसमें, क्योंकि एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर।
1: जी,
2: सो अभी देखते हैं क्या, पर ये कि जैसे आपको कोई भी ओकेजन करनी है, चाहे बर्थडे है, चाहे एनिवर्सरी है, चाहे कुछ भी है, आप आ सकते हैं कभी भी, और आप अपनी फैमिली को लाइए। और
1: जी, और अगर मेन्यू में देखें तो कौन कौन फिजियन डिशेस है हमारे लिए?
2: आपके लिए है कावा चिकन, कावा गोट, कावा लैम, और फिजी स्टाइल चॉप सॉय।
1: ओके, बट इसमें आप कावा तो नहीं मिलाते होंगे ना?
2: नहीं, कावा नहीं।
1: ओके,
2: काफी लोगों को इस चीज का वो है कि हम लोग कावा मिक्स करके दे रहे हैं।
1: जी,
2: बट एक्सप्लेन करोगे तो
1: जी डेफिनेटली। अभी जंगली मुर्गी आपने नहीं डाला ना?
2: जंगली मुर्गी भी डाल देंगे आप बोलोगे तो।
1: जी हाँ बिल्कुल, और जी हाँ, जिसे आपने सुना है, और बिफोर आई मूव टू द अदर वन, ये इसका टाइम क्या है, कब खुला रहता है आपका रेस्टोरेंट, या कितने देर तक पीपल कैन स्टे देयर? आई थिंक देयर विल बी अ बेटर क्वेश्चन।
2: हमारा रेस्टोरेंट शाम को 5 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक ओपन रहते हैं। अगर किसी ने कावा के लिए स्टे बैक करना है तो वी कैन प्रोवाइड दैट फैसिलिटी एज वेल, तो वी कैन स्टे टिल 2-3 AM व्हाटएवर, एंड यप।
1: Oh, that's fascinating. And actually, if you compare the size, जो अंदर का जो area है, I think it's quite decent, काफी अच्छा बड़ा area है। तो अगर किसी को पूरा book करना है, can they do that?
2: Yes, business के लिए या something? Absolutely, absolutely. They can do it.
1: They can hire the whole facility.
2: Whole place, yeah.
1: Yeah.

0: काफी लोग इसमें आ सकते हैं ना,
1: अराउंड 60 टू 70 पीपल इजीली.
0: Yeah.
1: We can accommodate.
0: Yeah. I mean, agar aap bethre agar throw karte hai, aaj ke I think tarikh mein that's quite a decent number feed karne ke liye. Yeah, no, definitely. If you want to talk to Sanjay or jisse uska jo boss hai Surya, agar baat karoge, then they can obviously come to some sort of a deal for you. So there is a specific Kava Lounge. Aur uske saath saath mein now we are going to talk about something quite interesting, kafi fascinating. I know there is something that especially Ashburton they would have been waiting for. To aap uske vishay mein bataiye.
1: So for Ashburton community, हम 12th of July को हमारी Pacifica Kava Lounge की second branch जो कि Ashburton में आ रही है 78 Tankard Street. So 12th of July को हम 2 बजे से 8 बजे तक grand opening करने जा रहे हैं और 14th July को officially opening है. तो आप सबका you are all invited. तो 2 से 8 आप कभी भी आइए, enjoy करिए Kava drink. Beers or food as well, and yeah.
0: Yeah, और अगर यहाँ से compare करें Christchurch से, so वहाँ का जो dishes है, it is very similar कि उसमें और भी varieties वगैरह है.
1: उसमें जो हमारा Fijian Indian menu है, वो तो same है. Plus जो Indian menu है, वो भी same है. हम addition कर रहे हैं European cuisine को, because there was a lot of demand of steaks and all. Mm-hmm. So we are adding those dishes as well. So it's kind of a mixed yeah. cuisine.
0: Mm-hmm. So. जी और आई नो पीपल जब आते हैं उनको म्यूजिक पसंद है, हु नोज मे बी कैरियोके वगैरह कुछ होगा, इज दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी वहां हो सकता
1: है. जी हम कैरियोके और हमारे 8th ऑफ अगस्त को बॉलीवुड नाइट है डीजे गिडियन
0: जी,
1: तो वो आ रहे हैं वहां पर और वहां पर
0: जी अभी तो अच्छी तरह ओपनिंग ही नहीं हुआ बट ऑलरेडी आपने
1: प्लान
0: इज वेरी एक्साइटिंग मूविंग क्वाइट फास्ट. तो ऐसा लग रहा है कि Ashburton का जो फीडबैक है काफी बढ़िया मिल रहा है.
1: जी अभी तक जो हमारे पेज हमने जो अभी क्रिएट किया है उसके हिसाब से तो हमारे को अच्छे व्यूज आ रहे हैं. अभी तक क्लोज टू 100 फॉलोअर्स हमारे आए हैं अभी पेज पे, तो होपफुली विल गेट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम द Ashburton कम्युनिटी.
0: जी बिल्कुल, तो आपको फिर से याद दिला दें, इट इज Pacifica Kava Lounge का जो सेकंड हम कहेंगे एडिशन जो लोग करने जा रहे हैं, विच इज ए ग्रैंड ओपनिंग. जो रेस्टोरेंट होगा वो 12th ऑफ जुलाई, नॉट फार फ्रॉम हियर. अभी हम जुलाई आई थिंक शुरू हो चुका है, सो वी आर ऑलरेडी ऑन जुलाई. हाँ, तो नेक्स्ट वीक की बात करें ना, ये रहेगा संडे को 2 PM, आप पहुंच सकते हो, बट 2 PM टू 8 PM भी तक रहेगा. एंड इट इज 78 Tankard स्ट्रीट. आई एम श्योर इट्स नॉट हार्ड टू फाइंड, बिकॉज Ashburton में तो आप ढूंढ ही लोगे. जी ठीक है, तो इट्स मिडल ऑफ द टाउन इज संजय साइस, तो आप जा सकते हो एंड कावा तो डेफिनेटली वुड बी देयर. और वहाँ भी इसी तरह बार सेटअप होगा.
1: जी
0: जी हाँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ
1: नोबल रेस्टोरेंट बार एंड अ पब.
0: जी हाँ, सो फ्रॉम 2 to 3 आई गेस दैट्स गोइंग टू बी अ फॉर्मल काइंड ऑफ ओपनिंग का कुछ टाइम होगा.
1: 2 to 8 बट 14th से जो हमारा जो है ऑफिशियल ऑफिशियल ओपनिंग है, तो वो सुबह 11 बजे से शाम को 1 बजे, रात को 1 बजे तक शायद.
0: ओके, सो द टाइम ओवर देयर इज मोर एक्सटेंडेड टाइम है.
1: जी
0: ओके, सो दैट मींस वहां पे लंच वगैरह भी मिलेगा.
1: लंच मिलेगा, लंच डिनर ब्रंच सब कुछ है वहां पर. हम एडिशन करना हम कोशिश करेंगे, हम ब्रेकफास्ट को भी ऐड करा जाए उसके अंदर, क्योंकि देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है पहले.
0: ठीक है, सो दे हम बात करते हैं Pacifica Kava Lounge, बट जस्ट बिकॉज संजय इज ही एंड वी आर सपोज टू आस्क सम हार्ड क्वेश्चंस एज वेल, वी सम यू नो इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे. सो वी विल डेफिनेटली
1: आस्क. और हमारा एक और प्लान है वो
0: जी,
1: अभी
0: थेड रेस्टोरेंट,
1: अब हम उसको नहीं कर सकते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकता.
0: ओके,
1: बट बहुत जल्द Ashburton को भी Ashburton में हम कुछ बड़ा करने
0: और भी बड़े करने जा रहे हो, बट अभी आपने Surya का अप्रूवल नहीं है क्या? आप बता.
1: अप्रूवल है, सब कुछ है, बट हम जस्ट वेट कर रहे हैं अभी.
0: ओके,
2: के साथ बातचीत को मजेदार और थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. Ashburton के बड़े प्लान के बारे में जानने का इंतजार रहेगा. आप संजय से क्या पूछना चाहते हैं? शुरुआत करें.
0: ठीक है, I don't know where that was coming from. Is that AI? Maybe किसी का फोन था, maybe आपका फोन होगा. ठीक है, तो आईया इज हियर, इट इज अमंगस्ट अस. आईया हमें सुन रहा है और हमसे बात भी कर रहा है, बट एनीवे वो जो आईया पूछ रहा नहीं, एक्चुअली मैं संजय से ये पूछना चाहता था कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, वन थिंग मैं हमेशा वही करता हूँ, मैं पूछता हूँ जाकर कि कैन हैव कॉफ़ी, तो हरदम आंसर नहीं रहता कि नहीं, उस पर कॉफ़ी नहीं मिलता है. व्हाई इज़ दैट?
1: बिकॉज कॉफ़ी इज इतना हार्ड नहीं है बनाने के लिए, बहुत मुश्किल है कॉफ़ी और अल्कोहल और सब कुछ एक साथ करने के लिए. तो जो हमारा जो Ashburton में जो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पर जरूर हम कॉफ़ी सर्व करेंगे.
0: ओके,
1: तो आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी.
0: एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे लग रहा है कि व्हाई इज दिस एंटी कॉफ़ी.

0: जब भी मैं कॉफी ढूंढने जाता रेस्टोरेंट में ना यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको कॉफी शॉप ढूंढना पड़ता है
1: जी. And then, of course, हमने चाय जरूर रखी हुई है, चाय पी जरूर.
0: जी हाँ, बट जो आप तो चाय रखते हो रखते हो ना जो मसाला टी,
1: मसाला टी हाँ,
0: तो उसमें आप ऑलरेडी बनाते हो ना उसमें पॉट में शुगर वगैरह जो मिला होता है,